0: वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार

0: आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला
1: और मैं हूँ मनीषा बोस। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमारे साथ आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। और आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं एफएम गोल्ड के साथ साथ इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेग 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर भी। साथ ही AIR लाइव न्यूज 24/7 पर भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों और मनीषा तुम्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि जिंदगी अक्सर बड़ी उपलब्धियों से नहीं बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों से आसान बनती है। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे दिन को बेहतर बनाती हैं, तनाव को कम करती हैं और हमें अपने लक्ष्य के और भी करीब ले जाती हैं। कुछ नया पढ़ना, समय पर काम पूरा करना, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत हमारा जीवन बदल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और आज का हमारा जो सवाल है इसी बात से जुड़ा हुआ है दोस्तों कि वो कौन सी आदत है जिससे आपकी जिंदगी को पहले से ज्यादा आसान, बेहतर और खुशहाल बना दिया है। अपने विचार, अपने अनुभव, कहानियाँ हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com पर। और ये भी हो सकता है, बताइए आप बोलिए।
0: और हो सकता है कि आपकी एक अच्छी आदत किसी और की जिंदगी को भी सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो इंतजार रहेगा आपके जवाब का। खत लिखिए, हम उसे जरूर पढ़ेंगे।

0: साथियों, ये गीत आप सुन रहे थे आए दिन बहार के फिल्म से और गायिका थी आशा भोसले। और देखिए ये गीत जैसा था खत लिख दे बाबू, और खत आ चुके हैं मंजुला जी के मुस्कान से पता चल
1: बिल्कुल आपके सांवरिया ने भेजा या नहीं भेजा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पास मेल आ गए हैं। तो ये लिखा है अंशु माला ने दिल्ली से, बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि मेरी एक छोटी सी आदत सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना, देखने में बहुत ही साधारण सी बात लगती है लेकिन एक छोटी सी आदत पूरे दिन का मूड और ऊर्जा तय करती है। दिन की शुरुआत एक व्यवस्थित काम से होती है तो मन को हल्का और सकारात्मक भी रहता है। बहुत ही खूबसूरत लिखा है। और अंत में उन्होंने एक छोटी सी बात और लिखी है कि ये आदत मुझे मेरी मम्मी से मिला है।
0: वाह, बहुत अच्छी बात है, एक विरासत में ऐसी आदत को अपने साथ लेकर चलना बहुत ही बड़ी खूबी है। और अगला जो संदेश है वो भी हमारे एक बहुत ही प्यारे श्रोता साथी का है और उनका नाम है नवीन भाटिया जी, और ये हैं मोती नगर नई दिल्ली से, जिन्होंने लिखा है जब से मैं एफएम गोल्ड पर जुड़ा हूँ तब से मेरी थिंकिंग पॉजिटिव हो गई है और जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। यानी कि उनकी ये आदत जो है हमारे एफएम रेडियो से सुनने की, जुड़ने की, ये आदत उनको सबसे बेहतरीन बनाती है।
1: बहुत ही खूबसूरत। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और एक खूबसूरत विचार लगता है मनीषा कुछ बताने वाली है।
0: बिल्कुल मेरे पास है दोस्तों, क्योंकि आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हमने बताया कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, कौन सी ऐसी आदत है जो आपकी जिंदगी में आपको आपकी खूबी से मिलाती है, उसी तरह दिन की शुरुआत अगर हम किसी अच्छे विचार के साथ करते हैं तो दिन भी बहुत खुशनुमा हो जाता है। जरा सोचिए, एक बच्चा जो होता है जब वो अपने आज के आनंद को जीते हुए क्या कभी कल के बारे में सोचता है, कोई योजना बनाता है? सोचिएगा, किसी छोटे बच्चे को याद करके आप सोचिए कि जब वो किसी पानी से भरे तालाब को या पोखर को पार करता है, या कभी उस पोखर को जब वो देखता है पार करता है तो उसे समुद्र की तरह समझता है जब पार करता है। मतलब उसका जो ख्याल है अपनी जीत के जश्न को मनाने का होता है और वो इस तरह अपनी जीत को पाता जाता है, महसूस करता जाता है।
1: और याद कीजिए अपने बचपन के सभी उस क्षण को जो भरपूर आपने जिया था, पूरी तरह से वो उस पल में ही मिल जाया करता था, बिना किसी पूर्वाभास के, फिक्र और चिंता के बगैर, बीते हुए कल के बोझ या आने वाले कल की व्यग्रता के बगैर, क्योंकि वो वर्तमान के अलावा कहीं और होना जानता ही नहीं था। और हाँ, वो कला बच्चे की मासूमियत नहीं बल्कि उसकी सिद्धि थी जो हर पल को जीना जानती थी।
0: बिल्कुल कहा, सही कहा आपने। और देखिए, बचपन में कुछ भी स्वाभाविक रूप से जादुई नहीं होता दोस्तों। दरअसल बचपन का जादू तो ध्यान की जो गुणवत्ता होती है उसमें छिपा होता है, यानी वो जब जहाँ होता है तब सिर्फ वहीं होता है ना। फिर बड़े होने के साथ हम अपने आप को, स्वयं को विभाजित करना सीख लेते हैं। हमारा एक हिस्सा कहीं और बैठा होता है और हम दूसरा हिस्सा कहीं और होता है। हम तन से कहीं और होते हैं, मन से कहीं और होते हैं। तो यही बात जो होती है वो हमारे एहसास को बदलती जाती है।
1: और यकीन मानिए, एहसास की परतों को हटाते ही बचपन का जादू ठीक वहीं मिलेगा जहां हमने छोड़ा था उसे। और अभी इसलिए सोचिएगा जरूर कि आखिरी बार कब वास्तव में आप वहां गए थे और आप कहां हैं।

0: अभी हम सुन रहे थे आशा भोसले और गीता दत्त को फिल्म थी सुजाता।
1: और दोस्तों, आज का दिन उद्यमिता की दुनिया के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे। और छोटे और मध्यम उद्योगों के वैश्विक अर्थव्यवस्था, नवाचार और रोजगार सृजन में योगदान को सम्मान देने का ये दिन 2017 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मनाने की शुरुआत की थी।
0: और दोस्तों, उसी तरह 27 जून का वो दिन है जो हमें भारतीय इतिहास के शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की याद दिलाता है। अपनी न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और समावेशी शासन के लिए प्रसिद्ध पंजाब के इस शेर को हम उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं।
1: और दोस्तों, आज का दिन इसलिए भी खास बन जाता है क्योंकि भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी, जिन्हें दो दशकों तक दौड़ के मैदान पर उनकी तेज गति के कारण पायोली एक्सप्रेस, उदन परी और गोल्डन गर्ल के नाम से पुकारा गया, जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है। आज ही के दिन 27 जून 1964 को केरल के कोझिकोड जिले के पायोली गांव में जन्मी पिलावुल्ला कंडी थेक्के परमपिल उषा यानी एथलीट PT उषा, उनके जन्मदिन पर हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।
0: और आज 27 जून की वो तारीख है दोस्तों, जब हिंदी फिल्म जगत के महान संगीतकार RD बर्मन, राहुल देव बर्मन, जिन्हें प्यार से मंचमता भी कहते थे, उनकी भी जयंती है। भारतीय फिल्म संगीत को एक नई पहचान देने वाले रॉक, जैज और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के बेहतरीन मिश्रण से संगीत जगत को सजाने वाले इस महान संगीतकार को आज हम नमन करते हैं।
2: Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.

0: फिल्म रामपुर का लक्ष्मण से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। और आपको बता दें, आप हमारे साथ जुड़े हैं आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। और हमेशा की तरह आज भी हमारी जो प्रश्नोत्तरी है वो है, आपकी कौन सी आदत में ऐसी है जो आपको सफल बनाती है, जिसके बारे में आपको हमें संदेश भेजना है fmgoldgee@gmail.com पर।
1: और मनीषा, इसी बीच एक मेल हमारे पास आ गया है रश्मि का गुरुग्राम से। वो लिखती है कि मेरी छोटी सी आदत है कि ऑनलाइन कुछ खरीदने के पहले 10 बार कार्ट में डालना और फिर बिना खरीदे बंद कर देना और फिर दावा करना कि वाकई क्या ये जरूरी है, फिर ये तय करना कि क्या ये जरूरी है। बहुत ही अच्छी बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें कार्ट में डालते हैं, उसमें कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, वो बहुत प्यारा सा संदेश है, ये है राजेश्वर राव जी का। और इन्होंने कहा है कि इनकी एक आदत है कि ये जब भी अपनी कार में ड्राइविंग के दौरान बैठते हैं तो वो अपनी ग्लास रखते हैं। तो हमें अपने इस चैनल के माध्यम से ये सबको जरूर बताना चाहिए कि हमें प्लास्टिक जो ग्लास होती है उसको यूज नहीं करना चाहिए, हमें प्लास्टिक के यूज से, उसके प्रयोग से बचना चाहिए, ताकि हम अपने एनवायरमेंट को शुद्ध रख सकें, उसे साफ रख सकें। बहुत सुंदर संदेश आपका, निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं तक भी पहुंचा होगा राजेश्वर जी।
1: और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा, ये किसको पसंद नहीं होता। यात्रा केवल नए स्थान देखने का माध्यम नहीं है बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों, नए विचारों से जुड़ने का अवसर भी है। और जब यात्रा का आनंद किताबों से जुड़ जाए तो सफर और भी यादगार बन जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी हिंदी यात्रा वृत्तांत पुस्तकों के बारे में बताएंगे जिन्हें हर यात्रा प्रेमी को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदी यात्रा जो है साहित्य की, उसमें महापंडित कहे जाने वाले राहुल सांस्कृत्यान की पुस्तक मेरे लद्दाख यात्रा, इसके बारे में ये पुस्तक जो है वो भौगोलिक सुंदरता, वहाँ के लोगों के जीवन और बौद्ध संस्कृति को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है उनके इस लेखन में। राहुल सांस्कृत्यान केवल स्थानों का वर्णन नहीं करते थे दोस्तों, बल्कि वो पाठक को उस वातावरण का हिस्सा बना देते थे। ये पुस्तक लद्दाख को अगर आप समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसकी सुंदर जो प्रस्तुति है उसका एक माध्यम है।
1: और अब बात करते हैं उमेश पंत की पुस्तक दूर दुर्गम दुरुस्त की। यह पुस्तक उन रास्तों की कहानी है जहां हर कोई नहीं पहुंचता। लेखक ने दूरस्थ और कम चर्चित स्थानों, जिसको कि आजकल हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा अनरियल वाली जगहों की

0: यात्राओं को संवेदनशीलता और रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। पुस्तक पढ़ते हुए महसूस होता है कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि रास्तों को जीने का अनुभव है। और अगली पुस्तक है कच्छ कथा, जिसके लेखक है अभिषेक श्रीवास्तव। चलो मनीषा तुम बता दो।
1: बिल्कुल, इसका नाम आते ही ना मंजिला आंखों के सामने सफेद जो रंग होता है, लोक संस्कृति, रंग बिरंगे उत्सवों की छवि उभर आती है। ये पुस्तक

0: और कुछ किताबों से।
1: वाह क्या बात कही मंजिला जी, और कुछ किताबों से पूरी होती है ये आपने बताया, और मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल दुनिया है, इस डिजिटल दुनिया में किताबों से जुड़े रहने से हम अपने मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये पुस्तकें केवल स्थानों की जानकारी नहीं देती हैं, बल्कि उन जगहों की आत्मा से भी हमें परिचित कराती हैं। यदि आप यात्रा के शौकीन हैं दोस्तों, या भविष्य में किसी सफर की योजना बना रहे हैं, तो इन हिंदी पुस्तकों को अपनी पढ़ने की सूची में जरूर शामिल कीजिएगा।

0: अभी हम सुन रहे थे गीता दत्त और मोहम्मद रफी को फिल्म 12 o'clock से।
1: और साथियों घर आंगन कार्यक्रम में आज की प्रश्नोत्तरी फिर से आपको बता देती हूँ। अगर आपने अपना रेडियो अभी ट्यून किया है तो सुनिए वो प्रश्न है आज का कि आपकी कौन सी आदत है जिसने आपको सफल बनाया है। और पहला संदेश मेरे पास है जो है दीक्षिता सोइन का, जिन्होंने लिखा है कि हर दिन पॉजिटिव थॉट्स के साथ दिन की शुरुआत करना और कंसिस्टेंट रहना और सकारात्मक रहना मुझे स्ट्रेंथ देता है। बहुत खूबसूरत बात आपने कही।
0: और अनन्या श्रेष्ठा का भी एक मेल आ चुका है जो लिखती हैं कि मुझे जर्नलिंग करने का बहुत शौक है और बहुत ही फायदा हुआ इससे, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग हुई है, फोकस बढ़ गया है और यादों को जो संभाल कर रखने का एक अच्छा तरीका भी मिल गया है। बहुत ही खूबसूरत,
1: बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हम आपको कुछ ऐसी जानकारियां देते रहते हैं, तो मंजुला जी के पितारे में एक और जानकारी है, मैं चाहती हूँ आप बताओ, शुरुआत करो।
0: तो अब हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की पारंपरिक थाली और उसके महत्व के बारे में। तो मनीषा बिहार में जो ये है आर्द्रा नक्षत्र, जिसको साधारण भाषा में कई लोग आर्द्रा नक्षत्र भी बोलते हैं, उसकी विशेष सांस्कृतिक और कृषि महत्व है। पीढ़ियों से यहाँ इस नक्षत्र के दिन खीर पूरी, जो मौसमी सब्जी, रसीले आम और जामुन खाने की परंपरा चली आ रही है। और ये केवल एक भोजन नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और परिवारों को जोड़ने वाली एक सुंदर विरासत है।
1: बहुत खूबसूरत बात है आपने बताया।

0: की जानकारी है। और श्रोताओं, इसमें दाल भरी पूड़ी जो होती है वो ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं जो मौसमी सब्जियां होती हैं वो प्रकृति के साथ सामंजस्य का संदेश देती हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना। वैसे ही खीर जो है वो शुभ अवसरों का अभिन्न हिस्सा मानी गई है। और जो आम है फलों का राजा, ग्रीष्म ऋतु की मिठास और प्रकृति के उपहार का प्रतीक है। और इसीलिए इस थाली में ये सब कुछ सजा होता है।
1: और मिट्टी की सौंधी खुशबू, आम की मिठास, खीर पूरी का स्वाद, यही तो है बिहार की पहचान। और इस नक्षत्र के आगमन पर भगवान इंद्रदेव का स्मरण किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। मान्यता है कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जिससे खेतों में हरियाली और किसानों के जीवन में समृद्धि आती है।
0: हालांकि ये परंपरा बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, लेकिन ऋतु परिवर्तन का स्वागत, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और नई कृषि जो है उसके लिए ऋतु का आगमन उत्सव के समान होता है। और ये बिहार तक सीमित नहीं रहता, भारत के कई राज्यों में अलग अलग नामों से ये परंपरा वर्षा ऋतु और कृषि चक्र के आरंभ का स्वागत करती है।
1: बिल्कुल, यही भारत की खूबसूरती है। परंपराएं भले अलग हो लेकिन प्रकृति का सम्मान, अन्नदाता के प्रति आदर और परिवार के साथ उत्सव मनाने की भावना पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। तो आइए इस आर्द्रा नक्षत्र पर हम सब अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोएं, किसानों के परिश्रम का सम्मान करें और प्रकृति के प्रति आभार दें।

0: पर आया धन। इस फिल्म से आप सुन रहे थे आशा और किशोर की आवाज में इस खूबसूरत से गीत को।
1: और एक और मेल हमारे पास आ गया है। रमीशा जैन है दिल्ली से। वो लिखती हैं कि यदि मुझसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी आदत जिसने मेरे जीवन की दिशा और दृष्टि दोनों को परिवर्तित किया, तो मेरा उत्तर होगा कि वो आध्यात्मिक साधना और सनातन जीवन पद्धति को पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनाना। यही वो परिवर्तन है जिसने मुझे भीतर तक दृढ़ बनाया, मुझे संभाला और प्रत्येक कठिन क्षण को मेरे पथ को आलोकित किया।
0: बहुत सुंदर विचार आपने लिखा हुआ है। और मेरे पास हमारी एक नियमित श्रोता साथी हैं, उनका भी संदेश आ चुका है। ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने लिखी है कि बिजली, पानी, पेट्रोलियम ऐसे जितने भी उत्पाद हैं और गैस का उपयोग बहुत सोच समझकर हम करते हैं, अन्न को भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, और यही आदतें हमें हमारे जीवन में सफल बना रही हैं।
1: और एक और मेल है गौरी शंकर जी का कि आप दोनों बेटियों को राम राम। बचपन की बातें अच्छी बुरी आज भी याद आती है। सुबह जब हम योग करते हैं तो विचारों में बदलाव जरूर आता है। विचार अच्छे ही आएंगे और काम करेंगे तो वो सही ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मेल करने के लिए।
0: और मंजिला जी, एक बहुत सुंदर सा संदेश है उत्तर प्रदेश भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता का। ये लिखते हैं कि हर दिन सुबह से रेडियो सुनते हुए अपनी दिनचर्या को हम पूरा करते हैं और गीत संगीत सुनकर सुकून पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। और देखिए, आपके सुकून को हम बरकरार रखें, यही हमारी कोशिश रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और चलो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे अजरक प्रिंट की, एक ऐसी हस्तकला की जो अपनी सुंदरता, जटिलता और प्राचीन इतिहास के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अजरक की परंपरा इतनी पुरानी है, इसकी जड़ें उन सभ्यताओं तक पहुंचती है जो मिस्र के पिरामिडों के समय में अस्तित्व में थी। कुछ इतिहास का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसी तरह की छपाई और ज्यामितीय डिजाइनों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, मुझे इसके बारे में एक जानकारी ये भी है मंजिला जी कि जो अजरक शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द

0: युवक से जुड़ा माना गया है और इसका अर्थ होता है दोस्तों नीला रंग। यही गहरा नीला रंग अजरक की सबसे बड़ी पहचान है और भारत में ये कला मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ और राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में विकसित हुई। खत्री समुदाय के लोगों को आप जानते होंगे, उनके जो कारीगर हैं वो पीढ़ियों से इस कला को जीवित रखे हुए हैं। उनके लिए अजरक सिर्फ व्यवसाय नहीं है बल्कि विरासत और पहचान का प्रतीक भी है।
1: और अजरक प्रिंट की सबसे खास बात यह है कि इसकी निर्माण प्रक्रिया, एक कपड़े को तैयार करने में कई दिन लग जाते हैं। इसमें 14 से 16 चरणों से गुजरना पड़ता है। प्राकृतिक रंगों, लकड़ी के ब्लॉकों और पारंपरिक तकनीकों की मदद से हर डिजाइन को बड़ी ही सावधानी से बनाया जाता है।
0: और नीले रंग के इंडिगो, लाल रंग के लिए मदार की जड़, पीले रंग के लिए अनार के छिलके, काले रंग के लिए लोहे के घोल का उपयोग किया जाता है। यही प्राकृतिक रंग अजरक को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाते हैं दोस्तों। अजरक के डिजाइनों में तारे, वृत्त, जालियां और अन्य ज्यामितीय आकृतियां दिखाई देती हैं। ये केवल सजावट नहीं है बल्कि प्रकृति, संतुलन और ब्रह्मांड के प्रति मानव के जुड़ाव को भी दिखलाती हैं।
1: बहुत ही खूबसूरती से तुमने बताया। और समय के साथ अजरक ने पारंपरिक परिधानों से निकलकर वैश्विक फैशन के जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज साड़ी, दुपट्टे, कुर्ते, जैकेट और आधुनिक परिधानों में भी अजरक की झलक देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अजरक केवल प्रिंट नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही कला, संस्कृति और शिल्पकारों की मेहनत की जीवित कहानी है। और यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परंपरा केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है बल्कि आज भी हमारे जीवन को रंगों से भर रही है।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म धर्मकांटा से।
1: और दोस्तों अब एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में हम सभी का जागरूक होना जरूरी है। बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो घरों की छत से ही रोशन कर रही है हमारे भविष्य को, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
0: और ऊर्जा की खपत को देखते हुए सरकार ने 2024 से शुरू इस योजना का लक्ष्य रखा है 1 करोड़ घरों को सोलर एनर्जी से जोड़ने का, ताकि लोग खुद अपनी बिजली बना सकें और स्वावलंबन से जुड़ सकें।
1: क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने वाली इस योजना से कार्बन उत्सर्जन को रोकने और देश को टिकाऊ विकास की ओर ले जाने का प्रयास है। और इससे जुड़ने वाले लाभार्थियों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी योजना है, यानी कम बिल और ज्यादा बचत।
0: और अगर आप इस स्कीम से जुड़ते हैं तो इसके लिए 78,000 तक की सब्सिडी भी मिलेगी और छत पर सोलर पैनल लगाना भी आसान हो जाएगा। इसका लाभ उठाने के लिए आपको आधिकारिक पीएम सूर्य पर पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, फिर छत पर सोलर पैनल लगवाएं, फिजिबिलिटी जांच पूरी करें और सब्सिडी प्राप्त करें।
1: आवेदन के लिए आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हो और नवीनतम बिजली का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक, इसकी जरूरत पड़ेगी। हर घर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। हर घर की छत जब बनेगी पावर स्टेशन तो एम्पावर होगा हर घर।

0: अभी आप सुन रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है दिल ने फिर याद किया। और इसी के साथ हम अपने आज के खूबसूरत सफर को देते हैं यहीं विराम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजिला और
1: मनीषा को इजाजत। लेकिन हम फिर मिलने के वादे के साथ आपको छोड़े जाते हैं इस गीत के साथ।
0: नमस्कार।

अस्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5

0: qualified as runners-up. They will now face Australia in the round of 32. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडिया वेव मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का. आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से. मैं आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे साल 1973 की एक ऐसी फिल्म की जिसने प्रेम, त्याग और रिश्तों की जटिलताओं को बड़े ही संवेदनशील ढंग से पर्दे पर प्रस्तुत किया. इस फिल्म का नाम है दाग. इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था. मुख्य भूमिकाओं में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी नजर आए थे. संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने. अगर हम संक्षेप में कहानी की बात करें, एक मिनट, कहानी की बात हम करते रहेंगे लेकिन शुरुआत हम करते हैं इस फिल्म के एक बहुत ही सुंदर गीत से.

तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दाग का ये बहुत ही प्यारा सा गीत किशोर कुमार की आवाज में, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ, आप भी हमें अपने दिल की बात बता सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम एक ही फिल्म से कैसा लगता है। हमारे इस ईमेल एड्रेस पर आप अपना आपके मन में जो बात है वो लिख सकते हैं, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com। तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो ये कहानी है सुनील की, जो प्रेम करता है सोनिया से। परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसे मृत समझ लिया जाता है। हालात के दबाव में वो दूसरी शादी भी कर लेता है, लेकिन बाद में जब उसका पहला प्यार उसके जीवन में लौटता है, तो उसके सामने रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनाओं का कठिन संघर्ष खड़ा हो जाता है। यही द्वंद्व इस फिल्म को भावनात्मक गहराई प्रदान करता है। और अगर हम इस फिल्म के किसी रोचक तथ्य की बात करें, तो ये फिल्म उस समय के लिए एक बहुत ही साहसिक विषय पर आधारित थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें दो विवाह जैसी संवेदनशील सामाजिक विषय को अत्यंत संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया था। हालांकि उस समय पर दो विवाह होना, दो शादियां होना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी, और इसको बड़े पर्दे पर दिखाना एक सच में बहुत ही साहसिक काम था। दर्शकों ने इसकी कहानी और अभिनय को खूब सराहा। तो इस फिल्म की हम बात करते रहेंगे, सुन लेते हैं इस फिल्म से जुड़ा एक और शानदार गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और मैं हूं आपके साथ सुनिधि गुप्ता। तो अभी आपने सुना फिल्म दाग का ये सदाबहार गीत हम और तुम और हम, किशोर कुमार और लता जी की आवाज में। इस गीत के शब्द लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, जिसे इस संगीत इसका संगीत दिया था इस फिल्म का जो गीत लिखे थे वो लिखे थे साहिर लुधियानवी जी ने, जिसने इस गीत को हमेशा के लिए अमर बना दिया। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म दाग के लिए राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और बेस्ट एक्टर अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। ये उनके शानदार अभिनय की एक और बड़ी उपलब्धि थी। तो इस फिल्म के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: तो इसी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म दाग की। यश चोपड़ा की फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता श्रोताओं ये रही है कि वो रिश्तों की भावनाओं को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारते थे। दाग भी एक ऐसी ही फिल्म है जिसमें प्रेम के साथ साथ जिम्मेदारी और त्याग को समान महत्व दिया गया है। इस फिल्म के बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन इस फिल्म के गीत इतने शानदार हैं कि श्रोताओं ने ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है हमें मेल पर कि हम इस फिल्म के गीत भी बराबर सुनाते रहें। तो चलिए सुन लेते हैं एक और गीत जो कि लता जी ने गाया है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आप अपना कार्यक्रम सुन रहे हैं एक ही फिल्म से। मैं हूं आपके साथ सुनिधि गुप्ता। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म बाग की। ये फिल्म उस दौर की सफल फिल्मों में शामिल रही और इसकी सफलता ने यश चोपड़ा के स्वतंत्र निर्माता के रूप में करियर को एक नई उड़ान दी। इस फिल्म के गीतों की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है। गीत केवल मनोरंजन नहीं करते बल्कि पात्रों की भावनाओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसके अगर आप सिर्फ गीत भी सुनेंगे तो आपको कहानी का अंदाजा भी हो जाएगा। फिल्म के संवाद और गीत इतने ज्यादा प्रभावशाली थे कि आज भी रेडियो और संगीत प्रेमियों की पसंद बने हुए हैं और लोग हमें बार बार रिक्वेस्ट करते हैं इस फिल्म के गीत को सुनने के लिए। हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि लोग आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रेडियो के साथ जुड़े हुए हैं, जो रेडियो प्रेमी हैं और रेडियो पर इस गीत को, इस फिल्म के गीतों को और साथ साथ कई सारे फिल्म के गीतों को सुनना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने मन की बात भी हमें बताते रहिए कि आप और कौन से गीत सुनना चाहते हैं और कार्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो आइए इस फिल्म का एक और सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।

उठा रहे हैं। इसके साथ साथ स्वर्ण सिंह ने भी मेल किया है और इनके परिवारी जनों का नाम शामिल करने के लिए इन्होंने कहा है, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, शुभदीप सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, इन्हें हमारा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है, इन्होंने सराहा है और हम भी आपके मेल का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आनंद उठाते रहिए हमारे कार्यक्रमों का। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म दाग की। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत तैयार किया था जो आज भी सदाबहार गीतों की सूची में शामिल किया जाता है। दोस्तों, दाग के संगीत में भारतीय शास्त्रीयता और मधुरता दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो इसके साथ साथ चलिए हम इसकी बातें करते रहेंगे, सुन लेते हैं इस फिल्म का एक और गीत।

फिल्म दाग के बारे में कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और मैं थी आपके साथ सुनिधि गुप्ता। समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम और जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

राष्ट्रीय दिवस के 50 साल समारोह में

आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं हबीब रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी समझता है।

0: जनाब अमित शाह इन दिनों गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी जारहियत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमरीका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वैंस ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदे से मुतालिक किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। तहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन जखीरागाहों के अलावा साहिली रडार तंसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्गो जहाज पर हमला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी था। उसने मजीद कहा कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज खित्ते में मौजूद रहेंगी। मारूफ तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। तहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके पास पसमांदगान में उनकी अहलिया पूर्णिमा भाग्यराज, एक बेटा, एक बेटी और पोते पोतियां शामिल हैं। भाग्यराज एक मुमताज फिल्मसाज थे जो अपनी दिलचस्प कहानियों, मुनफरिद स्क्रीन प्ले और हाजिर जवाब मुकालमों की वजह से तमिल सिनेमा में एक खास मकाम रखते थे। उन्होंने कई कामयाब तमिल फिल्मों की हिदायतकारी की। उन्होंने मकबूल हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता भी उसकी भी हिदायतकारी की थी। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय, डीएमके के सरबराह और साबिक वजीर आला एमके स्टालिन समेत कई अहम शख्सियात ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत नजर किए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। तमिलनाडु सरकार ने ऐलान किया है कि पूरे सरकारी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूम कल चेन्नई में अदा की जाएगी। कोलकाता के तारातला इमारत की गिरने के वाकये में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। बचाव और इमदादी काम जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने कहा है कि शुमाली बहरे अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बकिया इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के बाज इलाकों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। फुटबॉल के फीफा अल्मी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया जिसके नतीजे में मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। आज सुबह मैक्सिको के ग्वाडालाखारा स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एच के आखिरी मैच में यूरोगोए स्पेन से 1-0 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। इस जीत के साथ स्पेन ग्रुप एच में सरफहरिस्त हो गया है। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबाह समुन्द्री पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अगले कलीदी साथियों में सबसे ज्यादा करीबी समझता है जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। और फुटबॉल के फीफा अल्मी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to arrive in Seychelles in a short while on a 3-day state visit, describes Seychelles as a valued maritime neighbor and a key partner in India's vision Mahasagar. US Secretary of State Marco Rubio says Trump administration views India

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता

0: मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख साथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता

0: Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
2: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार

0: नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ एक एक गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का। हमारा अगला कार्यक्रम है एक ही कलाकार। तो आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के प्रिय श्रोताओं का मैं सुनिधि गुप्ता हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार में।
2: Dari Supentes National News Service 24x7 ikana prajupat pe program online yani ne pin medium wave don FM ke dio akashwani kargilin waqt putu sutngis na matsum chu sunsu kasta balti program burgaskat prajugat yan mazat program prajukan pin sip tasan

ये आकाशवाणी है, दिन के 3 बजे हैं। उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात का अब आगाज होता है। हमारी नशरियात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेशे खिदमत है इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पर सूबाई लोक गीतों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे हरियाणवी लोक गीत। शाम 4 बजे आप फिल्मी नगमे सुनेंगे। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात अख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों का खुलासा।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र होंगी।

0: वस्ता हुक्काम के ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक 321 अमवात समेत 1203 मामलात की तस्दीक हो चुकी है। अब तक 148 मरीज रूबा सेहत हो चुके हैं जबकि 419 को या तो अलग थलग रखा गया है या अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल के अहलकारों ने 77 मौत की तस्दीक की है और 265 मुश्तबा मरीजों की निशानदेही की है। इसी दौरान आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल ने बताया है कि और ज्यादा से ज्यादा अफराद से राबता कायम किया जा रहा है, बेहतर होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है और अपने घर वापस आ रहे हैं। शिमाल मशरकी खित्ते और मौसलात के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज से गुना का 3 रोजा दौरा शुरू कर दिया है जहां वो मुतअद्दिद प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर ने आज सुबह सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की और उनकी शिकायत से मुतालिक दरखास्तें भी वसूल की। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत कंजा गांव में 700 पौधे लगाए। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि शिमाली बहर अरब के मजीद कुछ इलाकों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में अगले 3 से 4 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात के महकमे ने मगरब बंगाल के जैली हिमालय खित्ते सिक्किम में अगले 2 दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरक के कुछ इलाकों में आज शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया के फुलरटन में भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका ने खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेट में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में रौनक चौहान ने इसराइल के मीशा जिल्बरमैन को 23-21, 21-11 से हराया। फुटबॉल के फीफा आलमी कप में आज मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने 1-1 गोल किया जिसके नतीजे मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। अगले दौर के लिए मिस्र का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप जी के एक दूसरे मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1-5 गोल से हराया और वो अपने ग्रुप में सर फहरिस्त है। भारत बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। उसने जापान के शहर में ग्रुप सी में अपने इफ्तिताही मैच में कजाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबाह समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी मुल्क करार दिया है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी साथी समझता है जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान कैलिफोर्निया में अमरीकी ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और फुटबॉल के फीफा आर्मी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद।

इस नगमे के साथ ही मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में आप सुनेंगे हरियाणवी लोकगीत।

अभी आप सूबाई लोकगीतों के प्रोग्राम में हरियाणवी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों का प्रोग्राम। पहला नगमा जुल्मी फिल्म से है। आवाजें हैं उदित नारायण और आशा भोसले की।

आप सब समाप्त कर रहे थे जिंदा दिल फिल्म का नगमा। आवाजें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। आइए सुनते हैं जख्मी दिल फिल्म का नगमा। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

0: आइए अब सुनते हैं फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश प्यार का तराना फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम और उदित नारायण की।
1: Love letter, love letter, love letter.

0: अभी आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मुदम्मर से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबाह समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी मुल्क करार दिया। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी साथी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। भारत की दीविका सिहाग और रौनक चौहान कैलिफोर्निया में अमरीकी ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे में जनाब मोदी सेशल्स से के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इस दौरे में वो सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम का शर्फ हासिल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स में भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के दरमियान खसूसी दोस्ती परवान चढ़ी है और ये बिरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक वसीले का काम अंजाम दे रही है। आज वजीर आजम के प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहिली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना शराकत दारी है। बहर हिंद के खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जनूब के तई वाबस्तगी में खास अहमियत हासिल है। ये दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का यादा करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के मुश्तरक अज़्म को तक़वियत फराहम करेगा। सेशल्स ने अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तक़िल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने मोदी की सेशल्स आमद से कबल वज़ीर ख़ारजा बैरी फौरे ने कहा कि मौजूदा आलमी निज़ाम और अक़वामी इदारों में इस्लाहात की जरूरत है ताकि ये मौजूदा दौर के हक़ायक़ की बेहतर तर्जुमानी कर सकें। उन्होंने कहा कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी असर व रसूख, अमन कायम रखने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। जनाब बैरी फौरे ने मजीद कहा कि सेशल्स अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की उम्मीदवारी की हिमायत करता है और उसका यकीन है कि भारत की शमूलियत आलमी तवाज़ुन को मजबूत बनाने और दुनिया में अमन के फरोग में मददगार साबित होगी। ज़रई और डब्बाबंद खुराक प्रोडक्ट्स की बरामदात से मुतालिक तरक्याती अथॉरिटी अपेडा ने मध्य प्रदेश के जोग्राफियाई शनाख्त GI टैग वाले

0: मिस्र और ईरान का मैच बराबरी पर खत्म हुआ। दोनों टीमों ने एक एक गोल किया, जिसके नतीजे में मिस्र नॉकआउट मरहले में पहुंच गया और वो पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। अगले दौर के लिए मिस्र का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ग्रुप जी के एक दूसरे मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 1-5 से हराया और वो अपने ग्रुप में सरे फहरिस्त है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोजा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी मुल्क करार दिया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज्यादा करीबी साथी समझता है, जो मुश्तरक अकदार और मफादात रखते हैं। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश होने की पेशगोई की है। भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान कैलिफोर्निया में अमरीकी ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और फुटबॉल के फीफा वर्ल्ड कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अभी तक आप सुन रहे थे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस। शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती हैं। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात लेकर हम एक मर्तबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
2: अभी तक आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के नशरियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक अब आप हमारे नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, एफएम 108.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। السلام علیکم میڈیم ویو تر گیان انگیش بی نش بی کل ہرتس میڈیم ویو تون سی نغب گیان انگیش بی نش بی کل ہرتس اف ایم ریا شیرا چنگ میگر تو نو موبائل ایپ نیوز اون ایئر کا دیو آکاش ونی کرگلن دیرے پرو چ پت پی پروگرام ان جی بی اس لے کھورے گا بولا وزیر نو پروپون ان تی خدمت لے لبسوت پروگرام ان کان جا خدمت لا نجی جون اسلام بو پرو مچن سون شیک دیرے جا پوشین شیر جون ال جنگ شورت اب دون وقت بو پیتوری تو سوت غنا مرچک سون سو کستا پروگرام گوزوک پیکا پرو چگت دوایا پروگرام صداقت دی پروگرامی رخصه کنگن مزد تخصاهم قرآن تلاوت نه ترجمه حجت الاسلام شیخ محمد ابراهیم سنگوی کنم.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لي

0: Durante es porque habrán la niña en el Miriam Dona FM que dio Akashwani Kargilin. Vos potu sotogana mersum chusun su casata Doctor Gulam Sen Bardi Kanar Deluxe Escuela Tisek Puchuget Nian Mazet.
1: Ding Radio Station Kargil Nianuk Tisek Lenma Doctor Gulam Sen Bardi Sab Juxut. Doctor Sab Nata Ding Supa Thon Yotki Blood Pressure Mampo Chakan Patient Ya Blood Pressure Thos Chakan Po Mathe Dola Medical Terms Ka Hypertension Zet To High Blood Pressure Yaniki Chi Busa In Boma In Chimin Line Dasan Jawan Unyan Nasam Manu Mangu Che The Blood Pressure Is Remo Yong Nukachis Man Zen Nukachis Man Maza Shuk Shalopa Che Mazos Pinzer Man Shuk Shad Zerizer Paju Mazos Pinzer The Blood Pressure Po Mi Mangu
2: बिल्कुल ले इनवा ब्लड प्रेशर बोता चिक चिक बाय डेफिनेशन होता चना ब्लड प्रेशर ना एक्चुअली इन बो चीन ब्लड प्रेशर वो मता हार्ट पेले ब्लड पो पंप चो लोग मीन मता हार्ट पेले तो ब्लड पो पंप चो जाने ई वे एक प्रेशर जिंग आता रग ना ले प्रेशर जिंग जनरेट चो थागल से का मता प्रेशर जिंग को ने जनरेट चो ले कौन ओले तेर प्रेशर वो सचिक जैसे आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोले 120 बाय 80 वाले गेन वो आंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे ले योग वो आंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे तो गेन मा वो 120 को आंगे सिस्टोलिक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 लो सोचा मगले योग मा डायस्टोलिक वो 80 लो सोचा मगले ये वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रोगले ये प्रेशर बोते हो फिर लूज सोचा मगले जैसे आता है सा ना सा चिक प्रेशर लूज ना मताए जिसे में हर अंग ना ले हर ऑर्गन ला ते ठग है अजु को सप्लाई बोल लूसन हो लेबन ते संग काम अंग छाव समान हो गया ले सो बसंग तिजम जिक प्रेशर बन नॉर्मली लूस ना होता ऑर्गन संग ठीक लूसन हो तो ते संग अगर ठोस ते छाना ले ब्लड प्रेशर बोल 120 ना जंग 100 योग को 80 संग ठोस ते छाना ले ते ने ते व्यंग आता जिसमें का नुकसान ले बाद मता हर ऑर्गन ने का प्रेशर मां को छाना नुकसान ले वाले तो मता गए अजुक शिगो चले कमिटी गो चले का गए जेएनसी जसले जॉइंट नेशनल कमिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन सो बसंग तो मा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नोले ते वे मता लगभग 4-4 साल इस थिंग ने गए ई अजुक को गाइडलाइंस को चेंज छ चले की कजो मता मैनेज चेंज देते पेशेंट नोले चिकचिका ब्लड प्रेशर वो 140 नेता से 159 ले अगर छान लगे ना उले सो बस अब तो वो आ गए

0: स्टेज वन चाहिँ लेकिन नउले अगर युगमा ऊ 90 से 99 जना त्यो स्टेज वन नान उले अगर 160 ने या 160 डो या 160 सम्म मंगपु छना या युगमा ऊ 100 डो या 100 सम्म मंगपु छनाले तने त्यो अंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन दर्शन ले सो मसा यु एज पर डेफिनेशन वो जेएनसी गाइडलाइन हिसाब है डेफिनेशन को यु नगाले कि ब्लड प्रेशर वो गुमा ब्लड प्रेशर वो चेक हो जाने ले एटलीस्ट 5 मिनट पेशेंट नो रेस्ट हो चले This thing ne agar blood pressure nen janele first blood pressure bong hai reading wo mithe chisle te jana te na yu chhar de chi chi mai patient ji ki wat mai doctor ka yuna ko ngal la cha chi pareshan so san ma dele tension so sna yuna ko mai chi de doctor chi mi de de te so ma te ja sam blood pressure cha chi gen la cha de ale so ma sam te fi ngai first reading bo agar ngata manne na discard chuna to ngata feel de mo only this thing ne ngata young blood pressure bo repeat chu chisle lampong is total mo lampong sun ju sun ale pehla ukram bo first bo discard chisle te sine second bana थर्ड ब्लड रीडिंग वो ब्लड प्रेशर रीडिंग में नीचे
1: से
0: बिल्कुल बिल्कुल सेकंड जो है ना मैं यंग लगभग यंतु पंगता यंग दो मिनट से मार दिख रहा गैप कॉन्शियस का ना अगर नियन ना ब्लड प्रेशर मापे तो नाले नतोक ना जारे ना फितोक संकाले लंपोक सुम
1: क्या खर्ची जाओ मतलब ओबिस्टी सेंट्रल ओबिस्टी यानी डॉक्टर बहुत मोटा छ जाओ लेंसिल मापो जाना मार मापो जाना ब्राज मापो जाना सुस्पा ना हेल्दी डाइट कुछ ही होगा शिन
0: हेल्दी डाइट ना छोटे सारे इम्पोर्टेंट लोग ले चिचिक तंग आता है छे कंजम्पशन बोले आमतौर सोसाइटी ने चुछ पहले नमकीन चावल कंज्यूम चोरे तो मस लास्ट टाइम गता लद्दाख से ना कुछ स्टडीज में तो ये देखा गया 10 ग्राम 12 ग्राम से ऊपर छा ले लेते हैं ले तो जम छा कंज्यूम चुना बॉडी फैटिक मान ले छा एक तो ब्लड प्रेशर तो खतरा ही ना गया मगर छा पर हम कार्सिनोजन आए तो एक कैंसर काजिंग एजेंट जान हो गए तो फिर अच्छा मापो एमिनेंस चल
1: सब ये रिस्क मैंने चलता तो मोस्ट ब्लड प्रेशर ही दिया उनको लज मापो जैसे कि मित योग साथ जरखन उन नतीम इमाम लखन तो शॉक बहुत बहुत शुक्रिया
0: थैंक
2: यू दरें जस डॉक्टर गुलाम हुसैन बर्दी कनर दिलुक्सिस को लड़ती से गएंगे नेपिन टीसो लेखन खन पिन में डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मीडिया मयू दोनों एफएम के दिवाकाशवाणी करगिलिन कसता नुहारिक प्रोजेक्ट यान मजद

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूं, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरला में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी

आकाशवाणी करगिल मेडमुएका प्रोग्राम गांधी कसल दिरिंगी फेसबा सिरपेनुक यंग रशिक यंती मेजबान सज्जाद अली शुजाति छोसना रिंचन फेसबा गांधी कसल सिरक्वासना बेनुत खान युले छर्मचुनसे अचुनमोन गंगमा यंग रशिक जुना सलाम रुचुगत गांधी कसल लुक्सो सिरुमिस्ट्रोलेका रिंचन स्नाबा खानुन नतेस चिंगेन थिकपु थलुक्स बेनुत मिसे लुक्सो ग्यावनिका महात्मा गांधी खुरी फ्यापुस चांचिक लुपशेद्रिक तजुर्बारिक लेंसपिन ना यंग तू ने यंबो यंबो रगल भी छिर प्यांगो नासुने फ्रोस्पिंगन मजदूरों ने ग्राले का द्रुल भी दे जलसा जुलूसुन ने यंबो देंगो गांधी जी छोसना मजदूरों ला कोंगे खापना स्कल थोप थांग सुने स्कोर प्यांगो खुरी समझून ना जलता ना हगों सा नातेस स्कल जोस बसे पुरी गी इसका देंगो प्रोचुक भी फ्रालुक्स मिनट पिन याले रिंचन स्नाना बखानुन ता दुन्मा छिर्पेका ngates thutdangse diringe phespa chirpengnuk ngates yang somal lob shedrik yang memang sirkilang gazat thethum ri yot pinna dun phalte bachas banuk mahatma gandhi chosna gazat karpar rek phaluk sri yang lamstan rek bacha kanin dun skorpengnuk diringe phespa chirpengnuk ngates sprachavit gandhi ji smolet hartal bakhan lasmini luksna ode zostan thongse kwa sngin makhum chinu pinzarat yang di mazdurun na laklastan kanuni chosna hunmet la kunti khakpe kana laklin mide zostenuk gazat gombek lenuk zerbi tetompu gandhi ji singin pyanuk jak zerba sketen chenut pin de laklastan kanun kunti chatpe ka tanpo jak pifia yang lushuk pifia gandhi ji sharbil kilyanuk diaspere frostings nam chakpa फ्योसिंग स्कोना दिर्मांग पेका रन लुक्षिक चाचाओ सकपा नस रंग बु तोकलिया शाचरे डिस्पेराओ लस्मीन ला उस्यन रिक मचुर यां कुंगा डिस्पेराओ जुमजन मचुर निखों इस मिक्चून यां लोग कुंती चिमास कांगन कुर्चुक्सुन सकपा दे मिगी चिमान सक जरे यों मनुचको कुं इस द्याओ जरेत तोमनार मांग बु नचिदुक्सेना नचस यरंग चिपर तोकरिया मिटुक चुदुक येरी रुकोय कांगाचस नक्स मिटुक चुदुक इन्नां गांधी जीज कुंगा कुंती छात पेगा रतन पोगा से दुख जरें जिक रंग इंगें थिक रासे जमा निसे जन ग्राल पो बचा बो सरे कासको साल्स दिला बाईस हरताल जुक से उतखन सगफिया लस ग्राल बस यां दू इन्नां मगन लाल गांधीस आश्रम है नुगां थेरल लुसी उतखन लसुन सा बेफिया मलसा चाल बिचिरबेन दे मजदूरन ओदे मलसाने नु चुक बिफिया स्टंडुक्स छनिन बसे थालुक्स बस या लस्मी फेदवा आश्रम इनंग मिक्रस बिफिया बियामस्के लस्यो चुक दुन सा खुआ तंग चबस यां खुंगेस चुके चुजुर ना दे बियामान सा खुरे आश्रम उन सापा लेबे चुक यां रन लुक्स ना थाथखान यां बो रंगे खाखुन बेन निमे जमे जन निसिफिया कुंती फ्रालुक्स ना कारपरपो तनपो बसे स्ट्रोलन चास गांधी जीस क्रोहतों दुक्चास ने न्यंबो न्यंबो मजदूर ने शुमान हुन कुरे फैक्ट्री मालूम न्यंबो स्पेरा दुन ला केरेन योतकने में यांग चिंगें थीपो

शंकर लाल जी पारखस जिप्सल बसे ब्रिसियुत बिदेशो बो खेदा की सत्याग्रह जरखन पो रतेमो बसे इंतेस सिल बसा चिके यले रिंजन आकाशवाणी कर गिल्ला स्नंगा बिनुत खनुन तातुस पुमो मेक मिलुशाज बसे गांधी कसली दिरिन सिरपो नतेस ध्याने का जुतुम बिग्राल बचावेत योंग में एलजे रग्यावी चिरुन खुरे यंताना थुक थुक पुसापा यंती मेजबान सच्चा दली शुजात यंग प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन ला शजदे बासत इजन या यशु खुदा नर्चमा अहिमानी फगरंग जय हिंद।

0: नियन तक पहुंचाए तो बहुत मशकूर होंगे।
1: जी जी बिल्कुल, हम सारे स्कीम्स के बारे में कोशिश कर लेंगे कि अभी सारे कवर हो जाएं। तो मेन हमारी स्कीम है पीएम ईजीपी है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। फिर आप रिपे कर लेते हो 3 साल के अंदर तो आप सेकंड पीएमजीपी लोन के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। उसके बाद दूसरी स्कीम है हमारी पीएम एफएमई, प्राइम मिनिस्टर फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। फिर रिसेंटली हमारी पीएम विश्वकर्मा स्कीम भी आई है, उसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन और लद्दाख सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सारा हम कोशिश कर लेंगे कि आपके प्रोग्राम में सारा कवर कर लें।
0: शुक्रिया सर।
1: जी, तो शुरू हम कर लेते हैं हम पीएम ईजीपी से। ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, इसमें आपको बिजनेस करने के लिए आपको लोन भी मिल जाएगा और डिपार्टमेंट साथ में आपको एक सब्सिडी भी दे देता है। इसमें ये स्कीम इतनी कामयाब रही, पहले इसमें सर्विस सेक्टर में 10 लाख इसका लिमिट था और 25 लाख इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में था। फिर अब ये इतनी कामयाब हुई कि जहां आपका 10 लाख था सर्विस सेक्टर में, उसको गवर्नमेंट ने 20 लाख बना दिया, वो प्रोजेक्ट कास्ट उसका 20 लाख तक हो जाएगा। वहीं पे जो आपके प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक के थे, उसको 50 लाख तक कर दिया। अब हम पहले तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कर लेंगे कि सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है और मैन्युफैक्चर कौन सी होती है।
0: बिल्कुल
1: ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंडस्ट्री से हम रॉ मटेरियल से कोई फिनिशिंग प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपका मैन्युफैक्चर हो गया। सपोज हम लकड़ी से कोई फर्नीचर बना देते हैं, कोई कुर्सी बना देता है, कोई दरवाजे खिड़की या कोई डिजाइनिंग कोई फ्रेम बना देता है, तो उसने मैन्युफैक्चर किया। वहीं कोई रेता बजरी और सीमेंट से कोई सीमेंट प्रोडक्ट बना देते हैं, जैसे टाइल्स बन जाते हैं हमारे, सॉलिड ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो एक लंबी चौड़ी इसकी भी फ्रिस्ट बन सकती है। तो वहीं कोई आपके स्टील वगैरह से आपके स्टील फैब्रिकेशन में कुछ कर लेता है। ये सारा हो गया आपका मैन्युफैक्चर। मटेरियल से एक हम फिनिशिंग प्रोडक्ट बना देते हैं, ये आपके हो गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके बाद हम जानेंगे आप सर्विस सेक्टर क्या होता है। तो जैसे आप मेरे मोबाइल खराब हो गया, किसी ने मोबाइल रिपेयरिंग शॉप खोल दिया, तो ये हो गया आपका सर्विस सेक्टर। वहीं पे उसके बाद आप किसी ने अपना कंप्यूटर की दुकान खोल दिया, वहाँ वो तो उनके ऑनलाइन फॉर्म भर देता है, या कोई अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोल देता है, या कुछ और काम कर लेता है वो, जैसे कि प्रिंट वगैरह होता है आपका, ये सब सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। तो मेन इंडस्ट्रीज की जितने भी स्कीम्स हैं वो आपका मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में आपकी एक्टिविटी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। वहीं बहुत सारे हमारे पास यहाँ लोग आ जाते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए, हमें लोन दे दो कह के। अब हम ये भी समझते हैं कि ट्रेडिंग क्या हो गया। सपोज मैंने एक मोबाइल बना दिया, मैं मैन्युफैक्चरर था, अब आपने खरीद लिया, वो आपने आप खुद कुछ नहीं करते हो, सीधा वो माल आपने मोबाइल बेच रहे हो सीधा मेरे से खरीद के, ये आपकी ट्रेडिंग हो गई। वहीं जैसे हमारे जनरल स्टोर वगैरह होते हैं या हार्डवेयर के दुकान होते हैं, वहाँ वो किसी से माल लाते हैं सीधा एज इट उसको बेच देते हैं, ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, ये इंडस्ट्रीज में फॉल नहीं होती है। उसके अलावा आप जो भी करते हो, चाहे आप गाड़ी बनाने का, चाहे आप अपना कंप्यूटर बनाने का, या आप उसमें टाइपिंग करते हो, आप ऑनलाइन फॉर्म भर देते हो, कोई लाइब्रेरी खोलता है, कोई टी स्टॉल खोलता है अपना, ये सारा सर्विस सेक्टर में आ जाता है, कहीं ना कहीं फॉल हो जाते हैं। आपका कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, आप अपनी ओर से कुछ करना चाहिए, तो वो आपका सर्विस या मैन्युफैक्चर में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले ये डाउट आपके जो सुनने वाले हैं उनको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि सर्विस सेक्टर कौन सा होता है, मैन्युफैक्चर सेक्टर कौन सा होता है। उसी से रिलेटेड जो भी स्कीमें हैं हमारे, इसी में फॉल हो जाएंगे। अब हम डिटेल्स में बोल देते हैं कि पीएमईजीपी स्कीम के बेनिफिट्स क्या क्या है, आप कैसे उसका फायदा ले सकते हो। तो मेन कैटेगरीज इसमें क्या है कि आपके एक आपको लोन भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंट आपको बैंक को लिखेगा, आप ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे सबसे पहले। तो इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आप कौन पर आदमी है। इसमें मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए इसमें। तो उसके बाद अगर आप 10 लाख से ऊपर प्रोजेक्ट डालते हो तो उसमें आपके, या 5 लाख सर्विस सेक्टर में, तो आपको आपकी 8 प्लस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। बाकी इससे ज्यादा आपका कोई इनकम वगैरह कुछ नहीं है। बाकी आप जनरल कैटेगरी से हो तो एक ओन कंट्रीब्यूशन भी होता है बैंक में, जैसे आप लेके जाओगे तो आपको अपना कुछ पोर्शन भरना होता है। तो पीएमजीपी में ऑलमोस्ट हमारे यहाँ सब एसटी है, तो सिर्फ आपको अपना कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5% ही है आपका। अगर आप जनरल है तो उसमें आपको अपना कंट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट कास्ट का 10% देना है। सपोज कोई आप 10 लाख के प्रोजेक्ट डाल देते हो या आप उससे बड़े भी डाल देते हो तो उसमें 10% आपका हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी से तो 5% डाल देते हो। वहीं सब्सिडी जनरल के लिए इसमें, अब एक रूरल एरिया है एक अर्बन एरिया है, इसमें एरिया को भी डिवाइड किया हुआ है इसमें इस स्कीम में। तो आप अगर रूरल एरिया में अपना यूनिट डाल देते हो और आप जनरल कैटेगरी के

0: तो आपको 25% इसमें सब्सिडी मिल जाएगा। अगर आपका अर्बन में है तो आपको 15% इसमें सब्सिडी मिल जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये रूरल क्या है, अर्बन क्या है, तो आपके जो भी यूनिट आप एमसी लिमिट्स के अंदर हैं वो सारे इसमें हम अर्बन के अंडर आते हैं। वहीं आप एमसी से बाहर जितने भी हमारे ब्लॉक लेवल के ये पंचायत वगैरह के जुरिसडिक्शन में पड़ जाएगा, ये सारे आपके रूरल एरियाज मान लेते हैं। तो आप एसटी हो रूरल में है तो आपका, आप जनरल हो रूरल में हो तो आपका 25% है इसमें, और वहीं आप अर्बन में हो तो 15%। वहीं आप एसटी भी हो रूरल में हो तो आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगा। तो इस तरह आपके 35% तक इसमें फर्स्ट लोन में आपको सब्सिडी मिल जाती है प्रोजेक्ट कास्ट
1: शुक्रिया
0: को।
1: सर।
0: जी
1: हमारे सामीन को थोड़ा ये डाउट हो जाएगा सर कि अगर किसी को आपसे लोन लेना लेने का ख्वाहिश है।

0: नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप पीएमजीपी का लोन ले लेते हो तो आप इसके बाद आप कुछ जॉब वगैरह नहीं कर पाओगे, लेकिन
1: बिल्कुल
0: कंडीशन ये है कि अगर आपकी सब्सिडी आपकी एडजस्ट हो गई है, कोई इशू नहीं है, आपका लोन रिपे होना चाहिए पूरा, आपके 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हो गए हैं, तो आपकी जो मार्जिन मनी जो सब्सिडी वाला है वो आपको विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, ये कंडीशन है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पीएमजीपी से लोन ले लिया तो आप फिर आगे जाके गवर्नमेंट जॉब या कहीं और सर्विस नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ कंडीशन ये है कि आप अनएम्प्लॉयड होना चाहिए इसमें,
1: होना चाहिए।
0: हाँ, कि आप साथ जॉब भी कर रहे हो, ये सोचोगे कि मैं इस एम्प्लॉयमेंट स्कीम से पीएमजीपी स्कीम से आप मैं लोन ले लूंगा, तो सिर्फ यही कंडीशन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोन नहीं ले पाओगे। अब हम इसी में आगे बढ़ लेते हैं कि
1: बिल्कुल
0: आप
1: सर,
0: अप्लाई कैसे कर लेंगे, ये वाला पार्ट हमारा रह गया था।
1: बिल्कुल
0: तो सब कुछ ऑनलाइन है इसमें, कोई मतलब बीच में हमारा फिजिकल इंटरवेंशन है ही नहीं। आप जो भी अपने एप्लीकेशंस वगैरह हो है आप, आपको पीएमजीपी पोर्टल पे जाना है, www.pmgp.gov.in पे आप विजिट कर लोगे, वहाँ पे आप पीएमजीपी आप ये यूनिट खोलना चाहते हो तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कर लोगे, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो एसटी अपनी सर्टिफिकेट अपलोड कर लोगे, आपकी हाइस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है उसको अपलोड कर लोगे, आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट कास्ट क्या है, आप किस टाइप की इंडस्ट्री में आप उसमें अपना प्रोजेक्ट लेना चाहते हो, तो आपका प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह आप उसमें डाल दोगे। तो बाकी आपको एक डीपीआर वगैरह वहीं एक फॉर्मेट भी मिला रहता है ऑनलाइन, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आप खुद उसको भर पाओगे, नहीं तो वो कंप्यूटर आप किसी जानने वाले से दुकान वगैरह है वहां जाके आप उनकी मदद से भी आप अपलोड कर लोगे। बाकी इसका कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह नहीं होता है, अगर आप किसी दुकान वगैरह में जाते हो जो जानने वाला इसको अपलोड कर लेते हो किसी साइबर कैफे वगैरह में, तो वहां उनके जो भी चार्जेस है वो ले लेगा, बाकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह इसमें कुछ नहीं होता। हाँ जी, ये है।
1: शुक्रिया सर। और इसके साथ साथ हमारे जो सामीन है उसके लिए अब और कोई स्कीम्स हो तो बता दीजिए सर।
0: दूसरी स्कीम इसी में है आपकी, फर्स्ट जब आप पीएमजीपी लोन को रिपे कर लेते हो तो आप इसमें सेकंड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या आपने पहले किसी गवर्नमेंट स्कीम के टाइप के तहत आपने लोन लिया हो, सपोज हमारी आरईजीपी होती थी, मुद्रा स्कीम होती थी हमारी, तो उन स्कीमों से अगर किसी ने लोन लिया है तो आप सेकंड लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड लोन के लिए कंडीशन ये है कि आपने सपोज पीएमजीपी फर्स्ट लोन लिया था तो उसको आपने पहले तो जो लास्ट आपके 3 साल में यूनिट प्रॉफिट में रहना चाहिए, ये कंडीशन है, और आपकी सब्सिडी जो है ये आपकी एडजस्ट हो चुकी रहनी चाहिए, और आपने जो भी लोन है उस लोन को रिपे किया रहना चाहिए, ये इसके लिए आपकी कंडीशन होती है। आपके सेकंड लोन के लिए आप एलिजिबल, आप अपनी चाहे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हो या अपने यूनिट को एक्सपेंशन के लिए कर सकते हो, है ना। पहले आपका यूनिट सपोज आपके पास जो प्रोडक्शन मशीनें वगैरह थी वो कम कैपेसिटी की थी, आप उसको और आगे बढ़ाना चाहते हो तो सेकंड लोन से आप इसमें मदद ले सकते हो। इसमें आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है अप टू 1 करोड़, इसमें सबसे आप फाइनेंस इसमें गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर लेगा, फिर उसके बाद आप सर्विस सेक्टर में वहीं ये 25 लाख तक हम इसमें स्पॉन्सर कर पाएंगे, तो सब्सिडी रेट इसमें 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा, और ओन कंट्रीब्यूशन जो है ये 10 लाख रहेगा। सेकंड लोन के लिए ये कंडीशन है, बाकी अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है, ऑनलाइन है आपका सब कुछ, सेम वेबसाइट में जाना है, सेम वेबसाइट में जाने के बाद आपका जो है जो भी आपके जैसे फर्स्ट में आपने जो भरा था एप्लीकेशन वगैरह, सेम वही प्रोसेस रहेगा।
1: थोड़ा सा क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं सर कि किसी ने आप से लोन ले लिया लेकिन उसको आपने कंडीशन रखा है कि रॉ मटेरियल यूज करके आपको कुछ न कुछ आपको काम करना है, अगर वो मतलब नहीं कर पाएगा, अगर आपने यहाँ से लोन और किसी नाम से ले लिया काम उसने और दूसरा बिजनेस अगर शुरू किया तो इसमें क्या हो सकता है सर?
0: इसमें तो आप वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गई है, आप ये जो शुरुआत में ऐसे इश्यूज होते थे तो आप इसमें क्या है ना कि मतलब 3 स्टेज वेरिफिकेशन है, अभी शुरुआत में जाती है, बैंक सबसे पहले तो इंश्योर करेगा कि आप मशीनें वगैरह जो भी लाते हो उसी एक्टिविटी से रिलेटेड, क्योंकि जीएसटी बिल्स वगैरह मांगते हैं, और वो जिस आप कंपनी वगैरह से लाते हो उनके अकाउंट में जाता है, उसके बाद सबसे पहले बैंक इंश्योर कर लेगा कि उसने यूनिट सेटअप किया हुआ है सेम एक्टिविटी के लिए जिसके लिए हम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, फिर सेकंड स्टेज पे डिपार्टमेंट भी देख लेता है, फिर उसके बाद आपको थर्ड पार्टी आ जाएगा, वो थर्ड पार्टी जैसे अभी आप इंडिया पोस्ट कर रहा है इसमें, तो वो लास्ट में जाके आपका जियो टेक कर लेगा आपकी सब्सिडी एडजस्ट होने से पहले, वो जियो टेक में यही वो सारा कुछ उनको एक ऑनलाइन फॉर्म उनको वो भी ऑनलाइन प्रोसेस है, आप वो देख लेंगे उसी हिसाब से है कि नहीं, वो अपना रिपोर्ट वगैरह सबमिट करेंगे, सपोज आपको नंबर ऑफ वर्कर्स उसमें स्किल वर्कर्स कितने दिया था वो सब वहां जाके साइड में देख लेंगे, वो भी पोर्टल में अपडेट भी करेंगे आपके उसने साइड पे कितने वर्कर्स को देखा, मशीनरी क्या क्या देखा उसमें, जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट से या सर्विस था उसका वो किस एक्टिविटी में कर रहा है वो सारा उनको रिपोर्ट भी देना पड़ता है। अब तो ये इंश्योर ही हो जाता है कि कोई आदमी अगर लोन जिस एक्टिविटी के लिए भी ले लेता है उसी में ही करना है।

0: ही पड़ेगा, कुछ और उसमें इधर उधर की गुंजाइश है ही नहीं आपकी।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इस स्कीम में तो यही है कि आपका भी हमने बता भी दिया है, इसमें पीएमजीपी स्कीम फर्स्ट से आप बेनिफिट ले सकते हो। अगर आप उसको और फर्स्ट पे करने के बाद आपका अब 3 से 7 साल के बीच में रिपेमेंट आपका पीरियड रहता है। तो इसमें मेन क्या है कि आपके दो कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं आपका जो भी लोन है। एक रहता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें आपकी मशीनरी वगैरह जो आता है, आपको यूनिट सेटअप करने के लिए आपका अपना शेड वगैरह या अंदर आपका जो भी कमरा या शोरूम वगैरह होगा उसको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए भी होगा और आपके मशीनरी वगैरह के लिए होगा उसमें, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपोनेंट नहीं होगा आपका। तो वहीं आपका एक वर्किंग कैपिटल भी होता है उसमें। तो वर्किंग कैपिटल आपका रॉ मटेरियल वगैरह जरूरत पड़ता है किसी भी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, एक यूनिट को सेटअप करने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल होगा आपका। तो उसका ये है कि आपको 40% आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा मिनिमम आपको उसमें, उससे एक्सेस आप नहीं जा पाओगे अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। 60% आपको मिनिमम अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट का उसमें खर्चा करना ही करना है। तो आप चाहे तो वर्किंग कैपिटल वाला कंपोनेंट कम कर सकते हो लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। वहीं आपकी सर्विस सेक्टर में भी सेम कंडीशन है कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका 60 होगा, 40 होगा सॉरी, वर्किंग कैपिटल आपका 60% आप प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा। तो वर्किंग कैपिटल को आप कम कर सकते हो दोनों केस में, 40 और 60 जो है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो वो इधर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट आप बढ़ा सकते हो जी। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हुआ इसमें?
1: नहीं सर, तो इस स्कीम से हमारे खत्ते लद्दाख में खुसूसन कारगिल में मतलब कितने लोगों ने इससे बेनिफिट हासिल किया उसके बारे में?
0: अब इसमें तो करोड़ों मिसाल में सब्सिडी जा रही है और बिल्कुल बहुत अच्छे यूनिट है। एक टाइम था हम हर चीज श्रीनगर पे डिपेंड थे, आज की डेट में इतने गए। आप किसी भी सेक्टर को ले लो, पहले हमारे पास गार्डन टाइल्स ले लो आप, है ना, पर टाइल्स वो डिवाइडर्स वगैरह, या आपका वुड कार्विंग वगैरह के लिए हम कश्मीर जाते थे, चाहे वो आपको सीढ़ी वगैरह के लिए या दरवाजों का कोई डिजाइन होगा, आज एक से एक यूनिट इसमें यहीं पे ही सेटअप है। बहुत सक्सेसफुल स्टोरीज हैं आपके, उसमें तो इसी स्कीम से ही सबने बेनिफिट लिया है और आज हम उस चीज से बाहर निकले हैं कि हम छोटी सी चीज के लिए भी सिनेरियो दौड़ रहे हैं। एक से एक अच्छे यूनिट हैं और इस स्कीम का सबसे फायदा आपको ये है कि वो अगर आपको काम करने के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट पैसा भी दे रहा है और साथ में आपको सब्सिडी भी दे रहा है। तो ये वो वाली चीज नहीं है कि कम इंटरेस्ट पे दे रहे हैं आपको, आपको साथ में गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी देता है कि एटलीस्ट आपका जो लोन है वो तो आपको हर हाल में फ्री ही हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप फ्री में काम करने के लिए पैसा मिल रहा है, मेन है आपकी नियत और आप खुद कितना अपने करियर को लेके इस साइड में आप, लेकिन आप कितना काम करना चाहते हो। लेकिन इतनी चीज है कि आपको कोई भी बिजनेस में जाते हो तो सब्सिडी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आप कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो उसमें आपको आगे कितना पोटेंशियल है, आपके टारगेट कस्टमर कितने हैं। तो थोड़ा आप खुद को भी काम करना है उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने से पहले। तो बहुत अच्छी स्कीम है आपको, अप टू 50 लाख तक आपको इनिशियली ही आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए पैसा मिल रहा है, उससे अच्छा और क्या। इस तरह ये पीएमजीपी स्कीम के बारे में था। अब दूसरी स्कीम पे जाते हैं हम, पीएमएफएमई के बारे में। पीएमएफएमई प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, ये है मेन आपका जो भी आपके फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री से उसके लिए है ये। तो ये स्कीम जो है आपका, देखो मेन इसमें क्या है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ खास होता है। इसी तरह हमारे यहाँ करगिल कहने से हम मतलब एप्रिकॉट से जाना जाता है, कोई भी बाहर से आएगा तो उसको ये पता है कि यहाँ खुबानी बहुत अच्छी होती है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हमारे लद्दाख में लेह कुशी वकथोन मिला हुआ है और हमारे यहाँ आपका खुबानी मिला हुआ है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। मेन इसका स्कीम ये था, स्कीम का ये जो एम था वो यही था कि हर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए। ठीक, तो ये भी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी वाली स्कीम ही है। इसमें भी आपको लोन भी मिलेगा, साथ में आपको सब्सिडी भी मिल जाएगा इस स्कीम में। लेकिन आपके जो भी यूनिट सेटअप कर रहे हो आप फूड इंडस्ट्री में, आपके वो यूनिट सेटअप होना चाहिए। सपोज आप कोई बेकरी खोल देते हो या वहीं आप एप्रिकॉट के जाम जूस या आप सी वक्त होने में जाओगे, ठीक है, तो एक फूड की भी लंबी चौड़ी एक लिस्ट बन सकती है आप। तो उसमें क्या था, आपको आपका अर्बन में अगर आप यूनिट लगाते हो पीएमई जीपी में तो आपको 25% सब्सिडी थी। इसमें चाहे आप रूरल में लगा लो आप अर्बन में लगा लो, दोनों केस में आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगा इसमें। तो लेकिन इसमें क्या है कि आपका आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हो, वर्किंग कैपिटल में नहीं है मिलेगा इसमें। उसमें प्रोजेक्ट कास्ट में थी, इसमें आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप जो भी मशीनें वगैरह डालते हो उसको कहीं सेट करने के लिए या आपका कोई आप शोरूम वगैरह खोलते हो, दुकान खोल देते हो, तो साथ में उसको थोड़ा ठीक करने का, उसी सब में आपका पैसा इंक्लूड होगा, रॉ मटेरियल में इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इस स्कीम का फायदा है। इसमें आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में, इसमें आपको सीड कैपिटल के लिए 40,000 पर मेंबर के हिसाब से आप टू

0: इसमें से डेवलपर को भी मिल जाएगा एज ए वर्किंग कैपिटल और स्मॉल टूल्स के लिए इसमें मिल जाता है स्कीम में।
1: इसके अलावा और एक स्कीम के बारे में भी बता दीजिए सर।
0: मैं उसके बाद जाते हैं, अगली हमारी थी दूसरी स्कीम पीएम विश्वकर्मा स्कीम आई थी रिसेंटली। लेकिन इस स्कीम में क्या हुआ कि मतलब सबने हमारे यहाँ कुछ एक दो ट्रेड्स में ही रजिस्ट्रेशन कर लिया। केवल ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे मतलब लोगों का एक या दो स्कीमों में आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। इसमें सबने क्या किया कि जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम थी हमारी, इस स्कीम में आपका पीएम विश्वकर्मा की बात चल रही थी हमारी, इस स्कीम में तो मेन क्या है कि आपको जो ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिल जाती है एक पीएम, और आपको एक कार्ड भी मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको इस स्कीम में स्किल डेवलपमेंट के लिए 5 से लेकर 7 डेज की एक बेसिक ट्रेनिंग होगी। अगर उसके बाद आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हो तो 15 डेज से ऊपर भी आप एडवांस ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं इस स्कीम में। और ट्रेनिंग के लिए कोई बंदा जाता है अपना काम काज छोड़ के तो पीएम विश्वकर्मा में आपको 500 पर डे के हिसाब से आपको स्टेफन भी मिल जाएगा उस स्कीम में। और एक टूल किट इंसेंटिव आपको 15,000 तक का मिल जाता है इस स्कीम में। सपोज कोई अपना टेलरिंग में कोई काम कर लेता है, वहीं आपका वीविंग में होगा या कोई बोर्ड में कर रहा है, इसमें 15 आपको टोटल उसमें ट्रेड्स आपका उसमें दिखाया हुआ है। लेकिन हुआ क्या हमारे यहाँ कि सबने टेलर या मशीन में सबने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो अब वो ये दो चीज़ें हमारी उसमें सैचुरेशन में आ गई तो आगे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है उसी वजह से। मतलब कोई भी ये होगा, कोई भी अगर विश्वकर्मा होगा या कोई हमारा आर्टिजन होगा तो विश्वकर्मा वगैरह या आर्टिजन होंगे तो हर इंडस्ट्री में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि सब ने एक दो ही ट्रेड्स में अप्लाई कर लिया, उसी वजह से आगे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है इसमें। तो इसमें आपका साथ में एक आपको कोलैटरल फ्री और बहुत कम इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिल जाता है तो अप टू 1 लाख, तो उसमें आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा आपका अगर आपने। लेकिन इसमें ये कंडीशन होती है कि आपने जो ट्रेनिंग है वो लिया रहना चाहिए आप, और आपको टूल किट इंसेंटिव भी मिला रहना चाहिए। तो उसके बाद आप ये जो है 18 मंथ्स में वापस कर लेते हो आप अपना फर्स्ट जो लोन मिला था आपको, तो उसके बाद और 2 लाख का अलग से मिल जाएगा, वो भी वही 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो उसके अलावा आप अगर डिजिटल में जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह है आप ले लेते हो तो पर ट्रांजेक्शन 1 रुपी के हिसाब से आपको अलग से इंसेंटिव वो भी अलग से मिल जाएगा इस स्कीम का ये बेनिफिट। जी
1: शुक्रिया सर, ऐसे बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से या लोन स्कीमें हमारे लोगों को आ रहे हैं। तो सर आज 27 जून को हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ एंटरप्राइज या मना रहे हैं, तो इस त्यौहार को मनाने का क्या मकसद हो सकता है सर?
0: साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि MSME होता क्या है। ठीक है,
1: बिल्कुल सर।
0: जो आप बोलते हो माइक्रो स्मॉल मीडियम, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक माइक्रो एंटरप्राइज होता कौन है। ठीक है, तो जो जितने भी यूनिट्स हैं जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ से कम होगा, चाहे वो 10 लाख के हों, 1 लाख के हों, ठीक है, या उनका टर्नओवर पर ईयर 5 करोड़ से कम होगा, ठीक, तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने मशीनरी और प्लांट वगैरह में उनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम, या दूसरी कंडीशन 5 करोड़ से उनका जो टर्नओवर है वो कम होना चाहिए, ये हो गया आपका माइक्रो वाला। वहीं फिर हम दूसरी उस पर जाते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्रीज होते कौन से हैं, तो जिनका 1 करोड़ से तो ऊपर होगा लेकिन 10 करोड़ से कम जिनका इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में आपके, और आपका 5 करोड़ से ऊपर उनका टर्नओवर या दूसरी वाली कंडीशन उसी में, और 50 करोड़ से कम उनका ईयरली टर्नओवर होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हो तो हम आपको बोलेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलेंगे आप। वही आप मीडियम एंटरप्राइज कौन से होते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपका 50 करोड़ से कम या 10 करोड़ से ज्यादा आपका प्लांट एंड मशीनरी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको हम बोलेंगे एंटरप्राइजेस, या आपका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम होगा और आपने 50 करोड़ से ऊपर आपने सालाना आपका टर्नओवर रहा होगा आपका, तो हम आपको मीडियम एंटरप्राइजेस बोल देंगे। तो ये था आपका क्या माइक्रो स्मॉल और मीडियम।
1: बहुत अच्छा सर, तुम्हारे पास बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं रहे, तो आखिर में हम अपने लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंस बात करना चाहते हैं सर?
0: देखो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ग्रो बिजनेस से ही कर सकते हो, अपने लिए मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई, बस आपकी नजर ये होनी चाहिए कि आप उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने लिए आइडेंटिफाई कर पाओ। बस अगर 1 लाख एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो उस पे काम करना शुरू कर लो, अच्छे से पहले रिसर्च कर लो कि मेरा टारगेट जो आपका कस्टमर होगा वो कौन होगा, आपके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा, आपका मार्केट पोटेंशियल कहाँ कितना है। जरूरी नहीं है आप सिर्फ लद्दाख को ही टारगेट करके चलते हो, यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल

0: आप हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स बाहर बहुत अच्छी रेट पे जा सकते हैं। देख लो अवेलेबिलिटी रॉ मटेरियल आप कम प्राइस पे उसको बाहर भी आप, अगर आपके पास कुछ ऐसा हमारे पास रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं तो बाहर भी आप सप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारा बिल्कुल अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है, पानी है जो हिमालयन रिज के पानी वगैरह है हमारे, है ना, तो उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती है। हम यहाँ से बाहर पानी बेच सकते हैं, वहीं हम लेदर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, हमारा सारा चमड़ा वगैरह बिल्कुल बेकार जाता है। तो इसी तरह हम वहीं एब्रिकॉट सीवकथन वगैरह के भी हम प्रोडक्ट्स बाहर भी बेच सकते हैं। तो कुछ ऐसा सोच के आओगे तो आप बहुत अच्छा ग्रो अपने करियर में बिजनेस से ही कर पाओगे। डिपार्टमेंट आपके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करता है, जितने हमारे यहाँ लद्दाख में अपॉर्चुनिटीज है आपको बहुत अच्छे, आपको यहाँ पे ज्यादा चैलेंज है नहीं है बिजनेस को सेटअप करने के लिए, चाहे वो डिपार्टमेंट्स हो या फाइनेंस वगैरह की जरूरत हो। तो वहाँ कहीं और आपको 10 चीजों के लिए ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ एक बिजनेस सेटअप करने के मूड में हो, अपॉर्चुनिटी आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो ज्यादा सोचते मत बैठो, एक बार आके हमसे राबिता जरूर कर लेना, फिर आगे जाके आप उस पे और उसको आए तक मिल तक पहुँचा सकते। जी
1: शुक्रिया रुकत अली सर, आपने अपने कीमती वक्फों में से वक्त निकाल कर आकाशवाणी के साथ आप जुड़े रहने से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शौकत अहमद फंक्शनल मैनेजर त्रिसो ने सगित प्रोग्राम पुथमा थोन दोनों यजो खुदा नार सहमो ने फ़खरानु। अस्सलामु अलैकुम।

0: Fayuli Wazir Azam Jinab Narinder Modis Bharati Mimang Sunna Yambo Grakchain Khuri Singh Speran Yongmi Aditi Jaga Nimi Baja Chukshi Ka Program Man Ki Baati Strolika Akashwani Station Gangmas Di Program Pong Yambo Nashir Bachain Domenma Durdarshani YouTube Channel Dona Prasar Bharati App News On Air Ka Di Program Pong Nashir Bachai Itu Jagpazat Yongmi Aditi Jaga Nimi Baja Chukshi Ka Program Man Ki Baat
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत नृत्य साहित्य नाट्य विधाएं धारावाहिक वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in
2: रंगी बिजनेस उल्लास के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रोक्स यंती चोंलेनुन लोकल इन या फायुली थोकी काइन आकाशवाणी स्टंचाइन कस्टमर उन सब पिल्ले पीस कप्स मांगो दरने यंतेस नंग या दफ्तर या हाटी का जुक से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिन गिन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजार 8700014242 का
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
4: 8700014242 सुनो ना
3: हाँ
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ
3: तो रोका किसने है हाँ
4: रोका तो किसी ने नहीं पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं
3: मुझसे
4: तुमसे तो अच्छा बताओ फिर
3: आकाशवाणी है ना मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है
4: पर उससे मेरा क्या फायदा
3: देखो फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं
3: बहुत आसान है मैं बताती हूँ नंबर नोट करो 8700014242
4: ओ 8700014242 लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242
5: Medium of the FM Akashwani Kargilin was put to Sotorduna Medication Kasata Akashwani Sir Magarikan Urdi Kabarina Tapsira Relevate Relay Lord Ambassad

0: इनके माँ बाप वो तंग आ चुके हैं और इसमें यहाँ तक नौबत आ गई कि बच्चों ने अपने माँ बाप को कत्ल करना शुरू कर दिया है पैसे की लालच से। माँ बाप से भी गुजारिश है सिर्फ उतने पैसे देना है अपने बच्चों को जितनी उनकी जरूरत होगी, जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहिए ताकि समाज हमारा जो है वो अच्छी तरह से रह सके, अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके और बच्चे जो है जो नौजवान है ये आज के गुल है फूल है ये फले फूले।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग और पुलवामा जिला में अलग अलग कार्रवाईयों के दौरान दो मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशा और मसनूआत की कुछ मकदार बरामद कर ली है। पुलिस ने शुपया और सोपोर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत खुदरो भंग की एक बड़ी मकदार को भी तबाह कर दिया जबकि अनंतनाग में जवाबित की पासदारी न करने वाली एक दवा दुकान को भी सील कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने शुपया में पांच जुआरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगाई गई कुछ रकम भी जब्त कर ली। दरियास्ता अनंतनाग पुलिस ने आने वाली यात्रा से कबल आज तैयारियों की एक कड़ी के तौर एक फर्जी मशक का इनाकाद किया। मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन ने हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ महकूमों में कई ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात कमीशन की वेबसाइट upsc.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। ख्वाहिशमंद अफराद 27 जून से 17 जुलाई तक दरख्वास्तें ऑनलाइन दे सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 28 जून को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 135वीं किस्त होगी। प्रोग्राम सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिन्दी नशरिये के फौरन बाद मन की बात का इलाकाई जबानों में तर्जुमा भी पेश किया जाएगा। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीका की सालसी में एक फ्रेमवर्क माहिदा तय पा गया है जिसका मकसद दीर्पा अमन और सलामती हासिल करना है। इस मुजवजा माहिदे में जंगबंदी भी शामिल है जो इस शर्त पर होगी कि हिजबुल्ला तमाम हमले बंद करे और जनूबी लबनान से पीछे हट जाए। मार्को रूबियो ने खत्ते में इस्तेहकाम बहाल करने की तरफ ले जाने वाला पहला कदम बताया। इसी दौरान अमरीका ने ईरान पर कुछ हवाई हमले किए हैं और कहा है कि यह कार्रवाई आबनाई हरमज में एक दिन पहले एक मालबरदार जहाज पर किए गए ड्रोन हमले के रद्द अमल में की गई। अमरीका के मरकजी कमांड ने कहा कि इसके फौजियों ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात को निशाना बनाया। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि यह पता लगाया जाए कि आया ईरान की जंग माहिदे के खिलाफ वर्जी पर कोई नतीजे होंगे या नहीं। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलई आफ्ताब सुबह 5:22 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: समयीन आदाब। आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक्कदा नार्को कोऑर्डिनेशन का 10वां इजलास भारत में मुनशियात के बैन अक्वामी और दाखिली नेटवर्क के खिलाफ जारी मुहिम में एक इंतहाई अहम तारीखी मोड़ की हैसियत रखता है। साल 2026 से 2029 के लिए विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल का इजरा और एक ही दिन में 6000 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात को तलब करने की मुहिम इस बात का वाजह सबूत है कि हुकूमत अब रिवायती और अलग थलग कार्रवाईयों से हटकर एक फैसला कुन मरबूत और नेटवर्क पर अपनी जंग की तरफ बढ़ चुकी है। वजीर दाखिला का ये दो टूक बयान के अगले 3 साल ये तय करेंगे कि नशा हमें हराएगा या हम नशे को हराएंगे इस चैलेंज की संगीनी और फौरी नुईयत को जाहिर करता है क्योंकि ये मसला अब महज अमन अमान या पब्लिक हेल्थ का मामला नहीं रहा बल्कि बराह रास्त मुल्क की अंदरूनी सलामती माशी इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से जुड़ गया है। इस पूरे कौमी रोड मैप और हिकमत अमली में जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सियासी और तस्वीराती हैसियत को मरकजी अहमियत हासिल है। यही वजह है कि नई दिल्ली में बैठकर जम्मू में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए जोनल ऑफिस का ई इफ्तिताह करना महज एक इंतजामी फैसला नहीं है बल्कि ये इस सरहदी खत्ते में मुनशियात की सरहद

अभी आप जगजीत सिंह की आवाज में गजल समाप्त कर रहे थे। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अगला गजल पेश खिदमत है गुलाम अली की आवाज में।

अभी आप फौजी भाइयों का प्रोग्राम शाम गजल समाप्त कर रहे थे मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज़ से सामीन शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम

0: अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटानिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि

0: कैंपेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरलम में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और जेसाई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है। हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है।

0: राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. Headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sihar, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan reach semifinals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport.

0: बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी पीएमएमएल में आज आनजहानी वज़ीरे आज़म पीवी नरसिम्हा राव के 105वें यौमे पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह पीएमएमएल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशी नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतो मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है, जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह के पिछले बरस 28 जुलाई को पार्लियामेंट के ऐवान में दिए गए खिताब की गलत तर्जुमानी की जा रही है। वजारत ने कहा है कि इन पोस्ट्स में उनकी तकरीर के कुछ हिस्सों को अलग करके इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे ये झूठा गुमान गुजरता है कि जनाब सिंह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भारतीय फौजी की जान तलफ नहीं हुई है। वजीर दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था जिसमें वाजह तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कारफरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर व खोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि एसआईटी की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलव्वस तीन मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन टीईटी के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रूपये की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही तीन मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले टीईटी के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में चार महीने से जारी महाजराई को खत्म करने की गरज से दो हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलविस हो गए हैं जिससे 40 मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदूकुश खत्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई